तही प्रकाश हमारा पहो। पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सहबे कमाल जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले दे नजदीक बसदा है अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया का मालक वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह जुड़ी हुई रूह जिसनू पता है जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जो एहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग यात्रा करया करते सन, तुर पे तुरे जा रहे हैं उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे दर्शना की इजाजत मंगी ते नाल कहंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हाथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हाथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदी। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार। साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई साडे धर्म दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहया। सो दर राग आसा

गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे।

तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी स्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले।

जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते तुद नो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै।

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाए।

शैल पत्थर मह जंतु उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया।

सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्या वह, सब त्या वह तुझ जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्या वो संतो जी,

अंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता।

कृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता।

तूं करता सचियार मैं डासाई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाउ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया।

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान।

सेवक सिख सब करतारा मोरच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आसंगरिए पूरन हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाऊ सु तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारी तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझो करे हो रच्छा राख लिहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आदंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करक करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्क

दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैलिहु उबारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख

कह नानक सच्ची साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गुवाइया, कर सात सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया।

नेत्री सतगुर वेखना श्रवणी सुनना गुरु नाव सतगुर से तीरतया दरगह पाई है ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वत दे जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

सत्संग जी, बोलो जी। वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवास भोज पाछे दसवीं प्रचा भगवती समर कहे गुरु नानक लई पिया है। रंगत गुरते अमरदास रामदास सेवे सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दया बैठा है। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुए सहाय दसा पातशी के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पाठदार दत्तर के खालसत। बोलो जी वाहेगुरु। पीवन महाराज आप जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ति हटियां जपियां तपियां जिन्होंने नाम जपया मन छकिया दे चलाई ते वाही देख डिढ कीता जना प्यारे सत्यारा जी कमाई दत्ते अंतर। बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघा सिंगणिया धर्म हे सही दिते बंदफस कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखियां दे चढ़े आ रहे न चढ़ाए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां कितिया धर्म नहीं आ रहा सिखी से देखे सब सत्संग वाहे तिना भी कमाई दत्ते अंतर। बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारे दत्ते अंतर की। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेताव है चित आवर कासद कासद सबको है। जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देख देख की फतेह बृद की पैस पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहेगुरु। गुरु जी बनवाज पंजे सदा सहाज दता जियो गुरुद्वारा निकाणा साहेब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप जे पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार तुझे आत्मा दादा अपने खालसा जी ने बख्शो। ये न्योटियां की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ने दता जियो दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास। ये की बनवाज जी आप जी के चरण कामना दरदास पंजाब ने बख्शिश की है आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमनी साहब संपूर्ण पाठ दिता है। इस वे संध्या समा जान के आपके चरण शोधदार रह रास साहब पाठ किधर कृपा करो भोइया भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी शोध के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतां दे हिरदे निशान दी कृपालता करो जी। अगों तो शोध ते पितर बाणी चारी बल बुद्धि बख्शिश करो भी महाराज इस खुशी विच आप दी बख्शियां दातां विचों पितर कड़ाप चाह दी देगा तैयार के हाजर दतार आप दी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत जी रखना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार दुखां कलेशां रोगां का नाश करो सुखां का प्रकाश करो बेज पदेह रख्या बख्शिश करो जी रार बख्शिश करो आप जी बख्शिया दाता चो लंगरां दी टुट सवारियां प्रबंध करो रार आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टाजी संघा टिंगियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकला बख्शो अते सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा दी भावना मकरी पालता करो भावना दाज बख्शिश करो जी। गुरु जी बनवाज दूर दराडे कराज बैठी नव कितना कितने शर्म कर रही है सारी संगतें शाजी प्रणाम घड़ियां लिख लो रार आपने कृपा जी संगत बख्शन ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਬੇਹਦ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਰ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜਵਾਜ ਬਦਤਾ ਸਾਧ ਸਕਦਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਚਾਹੀਆਂ ਸਾਧ ਸਕਦਾ ਜਾਲ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਘੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਾਓ ਸਾਂਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਫਿਰ ਪੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀ ਮਾਇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪੇਤਰ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਬੈਠੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀ ਦਰਾਜ ਰਮਤਾ ਵਾਸੀ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਦਰਾਜ ਬਣਾਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਤਾਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ

सुनहार सात्रिया काल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कोई ऐसा उदाहरण है। गुरबाणी दे विच ही सतगुरां ने जवाब दे दिता कि भाई साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी, तुमस्यो जोर अवर संगतोरी। पहला सौद की सी केवल ते केवल ए अरदास मालका किते प्रकार न टूटो प्रीत, दास तेरे की निर्मल रीत। साची प्रीत न टूटे प्यारे, जुग जुग रही समाए। जी किसी नूं पुछिए कि भाई बाबा रविदास जी महाराज जिस वेले होए ने उस वेले कौन अमीर सी, कौन ताकतवर सी, शायद भुल जाइए, पर जिन्हां ने उस माल प्रभु दे नाल सच्ची प्रीत पाई ओ सदा लई अमर हो गए ने। जिहड़ा भी उन्हां दी बाणी दे नाल प्यार करदा है, जपदा है, सतगुरु पाछे कहिंदे ने कि भाई ए प्यार ए प्रीति सदा लई अमर रहिंदी है। हर जुग जुग भगत उपाया फैज रखदा आया, राम राजे हर नाख सदुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारिया, निंद का पिठ दे नाम देव मुख लाया, नामे प्रीत नारायण लागी। अगला शब्द साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी, तुमस्यो जोर और संतो।

प्यार सहित आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। नानक जो तोर मिले, तुर तो भाव पहला तो जिन्हां ने मस्तक ते लेख लिखे ने से ओ हुण इस मनुखा जन्म विच आण मिलाए। मेरे सतगुरां ने रहमत कीती है, गुरु दे नाल मिलाप हो गया है। एक तुसी सौखा जिहा बचन पढ़ दिओ, तुहानू याद आ जाना। जिस वेले कथा कीर्तन की समाप्ति होवे ते छे पौड़ियां नानक साहिब जी दीआं गायन हुंदीआं ने, उहदे विच बचन आउंदा जे तोर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। तोर इथे भी उही बोल आया है, तोर मिले जिन्हां नूं महाराज कहिंदे तुर तो करम लिखिया होया है, वह मेरे गुरु दे नाल आके मिल जांदे ने। नानक जो तुर मिले सो हर से हुण आण मिलाए। ओ इस मनुखा जन्म दे विच सतगुरां ने अपने नाल मिला।

छलल बशो पै जियत जो रह मीन कपट स्नेह के स्नेही ना कहावई। कहिंदे ना जी ना मच्छी नहीं उते कोई कपटी हो सकती है। कपट स्नेह के स्नेही ना कहावई, बिन घन बूंद जो अंत जल पान करे चातरक संतान बिखे लाशन लगावई। तुसी समझ दे हो भी जेड़ा पपिया बबिया है अमृत वेला बोलिया बाबी हा तां दान सुनी पुकार मेघे नू फरमान होवा वरसो कृपा तारो अपनी चुंज तानू करदा है ते ओदे मुंह च स्वांति बूंद पैंदी है ते ओदी प्यास जड़ी है वो खत्म हो जाती। अगर ओही बबिया जड़ा है वो जाके नदियां दा पानी पीन लग पवे ओनू ओनू बबिया नहीं कहा जांदा। पहला बोल सी हंस दा, दूजा बोल सी मच्छी दा, तीजा आ गया पपीए दा। चात्रिक संतान बिखे लाशन लगावई, उधर ते शर्मशार कर देवेगा कुल नू। कहिंदे चरण चौथा बोल जिथे रिजल्ट निकलदा है, चरण कमल अल गोर सिख मोख होए आण देव सेवक होए मुकत ना पावई। केवल गुरु दा सिख गुरु दे चरणा दी शरण विच आके बैठेगा, शब्द नू सुनेगा ते बंधना तो मुक्त होवेगा, नहीं तो भाई गुरुदास साहब जी कहिंदे दर बदर ते ठोकर ही खावेगा। सारे बोल सुनो, मान सर त्याग आन सर जाए बैठे हंस, खाए जाल जंत हंस वंस है लजावई। सलल बशो पए जियत जो रह मीन, कपट स्नेह के स्नेही ना कहावई। बिन घन बूंद जो अंत जल पान करे चात्रक संतान बिखे लक्षण लगावई। चरण कमल अल गुर सिख मोख होए आन देव सेवक हवे मुक्त ना पावे। तेवे अज मेरे साहब कृपा करदे ने कहिंदे जिन्नी नाम विसारिया, जिन्ना ने नाम नूं भुला दिता है क्या जप जाप है होर की, होर जाप जपण दे नाल पार उतारा हो जावेगा। धन गुरु अमरदास महाराज कहिंदे कदे भी नहीं। क्यों? धन गुरु अमरदास महाराज आप 21 बार यात्रा कर आए ने, आप 21 बार यात्रा कर आए ने, देवी देवत्या नूं मन बैठे ने, गुरु अंगद देव महाराज लैने दे रूह जांदे रहे ने, पर जदों गुरु वाले बन गए ने फिर झांझरां ला के सुट दित्तियां ने, फिर ते केवल मेरा तू ही है। महाराज कहिंदे क्या जप जाप है होर, होर जाप जपण दे नाल प्राप्ति नहीं है। बेसटा अंदर कीट से, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, बिष्टा गंदगी है, कीट से वो फिर गंदगी दे कीड़े बन जाते ने। कई बार देखो मुंह किवें अड्डदे ने, मुठे धंदा चोर, मुठे तो भाव वो ठगे गए ने, उन्होंने विकारा ने ठग लिया है, धंदिया विच गुलतान हो गए ने, नाम नू वसार के वह चोर बन गए ने। चोर की हामा भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए, दसो चोर दी कोई हामी भरदा। एक बोल भाई गुरुदास साहब जी ने भी लिखिया है, कहिंदे चोर करे नित चोरियां, ओढ़त दुख भारी, नक कन फड़ वड्डी है रावै पर नारी। चोरी नाल ही प्राय रूप देखेगा ना, अखां ने चोरी कीता ना। फिर बोल सुनियो, चोर करे नित चोरियां, ओढ़त दुख भारी, नक कन फड़ वड्डी है रावै पर नारी। जिस वेले चोरी दे नाल पर औरत नू देखदा है, औरत मर्द नू देखदी है, तां भाई गुरदास साहिब जी कहिंदे चेता रखी, मेरे वाहिगुरु जी दी दरगाह विच तेरा नक ते कन कटिया जाणा ई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब जी कृपा करदे ने वो ऐसे पुरश ने जिन्हां ने नाम नू वसार दिता है। नानक नाम न विसरै, वाह जी वाह, बेनती करया करिए। नानक नाम न विसरै झूठे लालच होर, भई होर झूठ दे लालच विच लग के नाम न विसरै। बेनती है, तुसी सौखा बोल पढ़दे रहिंदे हो, विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावा देना।

हो, चा विच कोई थकावट नहीं है, बद्दा चट्टी विच थकावट है, बिनती है नानक नाम, मम्मे नु औकड़ है नाम ना विसर है, मेरा नाम ना विसरे। पातशाह जी झूठे लालच विच लग के, इस करके महाराज जी दे अमृत बचन ने सौखा बोल तुहानू याद है, साध संगत भज केवल नाम। साध संगत च केवल दी बेनती की महाराज ने, केवल नाम नू जप। अगे सब कृपा कर दे।

बस आई चितवनी है। काम धंधे किरत सारे ही ने पर अंदर चितवनी ओदी है, दूजा नहीं कोई, ओ तो बिना दूजा नहीं है। रोम रोम हर उचरा, वाह जी वाह, आखो सतनाम श्री वाह, लाख जेबा देवो मेरे प्यारे, लखा जवाना बन जांदियां ने एक एक रोम दियां, उस एक एक रोम जीबा दे द्वारे गुरु गुरु दे जाप नूं जपदा है। उच्चर है खिन खिन रसोई, खिन थोड़े थोड़े समय विच पातशाह जी कहिंदे उहदा जाप जड़ा अजप्पा जाप बन जांदा है। गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, असल विच इहों दा जड़ा प्यारा है जिन्हों नाम नहीं विसरदा, जिहदे अंदर नाम दी चितवणी है, जिहदियां एक एक रोम करोड़ा करोड़ा लखा लखा जीबा बन गईयां ने, मेरे सच्चे पातशाह जी कहिंदे उह गुरमुख है। उहदा जन्म जड़ा सकार था वह सफल हो गया है, उसे गुरमुख वास्ते कहिंदे ने गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया। उहनूं कहा जांदा है भई जन्म सवार के जदों मात लोक तो जांदा उह सचखंड जा रहा है। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मल्लिया, गुरमुख भोजन भाओ चाओ अलल्या, गुरमुख सदे जान आवन कल्या। मुख गुरमुख जीदा मुख गुरु वले है, गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी, गुरमुख सच कमावे करनी, उस गुरमुख दी करनी जड़ी कमाई ओ उच्ची हो जांदी है। उदा जन्म जड़ा सफल हो जांदा, निर्मल मल खोई वो अंदरों निर्मल हो गया है, मल जड़ी है अंदर दी खत्म कर दिती है। उदे वास्ते बोल है जीहो निर्मल बारहो निर्मल, बारहो ता निर्मल जीहो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे ना, यो कूड़ वल्ले नहीं तुरदा, अंदरों बारहों निर्मल हो जांदा है। नानक जीव दा पुरख ते आया अमरा पद होई, जिन्ने संसार विच रहिंदियां मनुखा देही अंदर स्वासा दे अंदर चलदियां उस पुरख पूं जमा रख नरका तो रखण वाले दा सिमरन कीता जाप नूं जपिया है अमरा पद होई, वो अमर पदवी नूं प्राप्त कर जांदा है। भाव की है उहदा जमना ते मरना मेरा गुरु कट दिंदा है, यही मेरे गुरु की वडियाई है। नाम दे विच बरकतां ने, शब्द की समाप्ति है, एक मिनट बाकी है, प्यार विच आखो।

0: नम है अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावो
1: कल क्लेश तन माहि मिटावो
0: सिमरों जास विसंबर एक
1: नाम जपत अगन

0: नानक उन संग मोहे उदारो
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम
0: भगत जन के मन विश्राम रहा
1: प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसे
0: प्रभ कै सिमरन दुख जम न से
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरे
0: प्रभ कै सिमरन दुश्मन डरे
1: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे
0: प्रभ कै सिमरन वंदन जागे
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापे
0: प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे
1: प्रभ का सिमरन साध कै संग
0: सर्व निदान नानक हर रंग
1: प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध
0: प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व
1: प्रभ कै सिमरन जप

0: प्रभु सिमरह से बतवंते,
1: प्रभु को सिमरह से जन परवान,
0: प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान,
1: प्रभु को सिमरह से बे मोहताजी,
0: प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे,
1: प्रभु को सिमरह से सुखवासी,
0: प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी,
1: सिमरन के लागे जिन आप दयाला,
0: नानक जन की मंगर वाला,
1: प्रभु को सिमरह से पर उपकारी,
0: प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी,
1: प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे,
0: प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे,
1: प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता,
0: प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता,
1: प्रभु को सिमरह तिन आनंद कने।

0: बार व्यवस्था तुझह प्यार है दूध
1: और जो वन भोजन सुख सूद
0: बिरध भया ऊपर साख सैन
1: मुख प्याओ बैठ को देन
0: एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे
1: तो नानक सीजे
0: यह प्रसाद धार ऊपर सुख बस है
1: पुत्र प्रात मीत

0: दृढ़ कर मन मने प्रतीत
1: काल आवे मुबड़े चीत
0: पैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार महालोभ त्रोह
0: याहू जुगत।

0: इस ठाकुर को रख मनवाही।
1: यह प्रसाद सुगंध तन लावे है,
0: इसको सिमरत परम गत पावे है।
1: यह प्रसाद बस है सुख मंदर,
0: सहते आए सदा मन अंदर।
1: यह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना।
1: यह प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा त्याय त्यावन जोग।
1: यह प्रसाद पाठ पटंबर हटावे,
0: सहते आकत अवर लुभावे है।
1: यह प्रसाद सुख से सोई जय,
0: मन आठ पहर ताका जस गावी जय।
1: यह प्रसाद तुझ सबको मन,
0: मुख ताकु जस रसन बखाने।
1: यह प्रसाद तेरु रहता धर्म,
0: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
1: रब जी जब तुंदर गह मान बावे,
0: नानक पासे ती कर जावे।
1: यह प्रसाद आरोग रंचन दे,
0: लिव लाव तिस राम सुनेही।
1: यह प्रसाद तेरा ओला रहत,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: यह प्रसाद ढाके,
0: मन सरनी पार ठाकुर प्रभता कह।
1: यह प्रसाद तुझको न पूछे,
0: मन सास सास सिमरहु प्रभु ऊचे।
1: यह प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
0: नानक ताकी भगत करे।
1: यह प्रसाद आपूखन पहरी जय,
0: मन ते सिमरत क्यों आलस की जय।
1: यह प्रसाद अश्व हस्त असवारी,
0: मन तिस प्रभु को कबहु न बिसारी।
1: यह प्रसाद बाग मिलख तना,
0: राख प्रोय प्रभु अपने मना।
1: जिन तेरी मन वंत बनाई,
0: उठत बैठत साधते साधते सहते आई।
1: सहते आए जो एक अलख है,
0: इहा उहा नानक तेरी रखे।
1: यह प्रसाद करे पुन बोदान,
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
1: यह प्रसाद तू आचार व्यवहार।

0: नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी
1: साध के संग अगोचर मिले
0: साध के संग सदा पर फुले
1: साध के संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत।

0: के संग नहीं कछ काल
1: दर्शन भेटो निहाल
0: साध के संग कलूकत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला
1: साध संग विचरत हर मेला
0: जो इच्छा सुई फल पावे
1: साध के संग न बिरथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बस
1: साध सुन
0: साध के संग सुनो हर नाऊ।

0: दिखा
1: साधु के संकट कट दिखा
0: संत है आज्ञाकारी
1: संगत पही हमारी
0: साधु के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध पेटे संजोग
0: साध की महिमा वेद न जान है
1: सुनते
0: साध की

0: वर्ष
1: मन में प्रीत निरंजन दर्श
0: पार त्रय रूप न पेक्षे नेत्र
1: साधु टैल संत संग हित
0: करन न सुने काहू की निंदा
1: सबके जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद विखया पर हर
1: मन की वासना मन ते टर
0: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
1: नानक कोट मध्य को ऐसा परस
0: वैस न सो जसो परसो प्रसन्न
1: कृष्ण की माया ते हुए पिन
0: कर्म करत हो वह नह कर्म
1: किस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: ताहू फल की चैन बाचे
1: केवल भगत कीर्तन संग्रह।

0: परम गत पावे।
1: भगवती भगवंत भगत का रंग,
0: सगल त्याग दुष्ट का संग,
1: मनते विंच सगला परम,
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म,
1: सत्संग पापा मल खोवे,
0: इस भगवती की मत उत्तम हुवे,
1: भगवंत की टहल करे नित नीत,
0: मन तन अर्पे विष्ण परीत,
1: हर के चरण हृदय बसावे,
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे।

0: पात्र को तारे।
1: सर्व रोग गाव गाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम।
1: काहू जुगत कित न पाइये धर्म,
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास।
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास संतन पाए तिन पाया।

0: तैसा स्वर्ण तैसी उस मट्टी,
1: तैसा अमृत तैसी बिख खाटी,
0: तैसा मान तैसा अवमान,
1: तैसा रंक तैसा राजान,
0: जो बरताए साई जुगत,
1: नानक उह पुरख कही है जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
1: जित जित घर रख है तैसा तिन नाओ,
0: आपे करन करा बनजोग,
1: भावै सोई फुन होग,
0: असरेओ आप होए अनत त्रंग,
1: लखे न जाहि पार ब्रह्म कै रंग,
0: जैसी मत दे तैसा प्रगास,
1: पार ब्रह्म करता।

0: महाविद अनक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट पैतीर्थवासी
0: कई कोट

0: कई कोट नव तन नाम त्याव है
1: ज्ञानंगर देकांत न भाव है
0: कई कोट पहे अभिमानी
1: कई कोट अंधज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट अपेग आत्मन गौर
0: कई कोट पर दर्व को गिर है
1: कई कोट पर दुख न कर
0: कई कोट माया श्रम वाहे
1: कई कोट पर देश प्रमाहे
0: जित जित लाभ तित तित लगना
1: ज्ञानंगर की जाने का
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
2: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
2: कई कोट पात्र वृक्ष निभ जाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
2: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट शशियर सूर्य नक्षत्र
2: कई कोट देव दानवेंद्र
0: सगल सामग्री

0: कीर्तन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
0: कई कोट जख किनर पिसा।

0: कोट प्रभ को खोजनते
1: पार्वते
0: कई कोट दर्शन प्रप्यास
1: जिनको मिले वो प्रभ विनाश
0: कई कोट मांगे सत्संग
1: पार्वम दिन लागा रंग
0: जिनको हुए आप सुप्रसन्न।

0: को अपनी करे बखशीस
1: जियो
0: पिंड सब तिसकी रास
1: पूर्ण ब्रह्म प्रकाश
0: अपनी बनते आप बनाई
1: नानक जीवे देख बढ़ाई
0: इसका बल नाई साथ
1: करण करावन सर्व को नाथ
0: आज्ञाकारी वपरा जियो
1: जो तिस भावे सोई फुन थियो
0: ऊंच नीच में बस
1: प्रभु सोग हर रंग हसे
0: प्रभु निंद व्यवहार
1: प्रभु।

0: नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज महान
0: तो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: जो होवत विष्टा का जंत।

0: नानक सद ही रहा सुमाए।
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप किन अपन विस्तार
0: सब कचुष्काव करने हार
1: उससे भिन्न गाओगे होए
0: शांत नंतर एक कैसो
1: अपने चल तू आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नान कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने वखियानी
1: सच सच सच सब कीना
0: कोट मध्य किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार रूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: काट काट सुनी श्रवण बखियानी।

0: अश्वरी
1: संत कै दुखन आर जा कटै
0: संत कै दुखन जमते नै जुटै
1: संत कै दुखन सुख सब जाए
0: संत कै दुखन नरक में बाए
1: संत कै दुखन मत हुए मलीन
2: संत कै दुखन सो पाते हीन
1: संत के हते को रखै न कोए
2: संत कै दुखन ठान श्रेष्ठ होए
1: संत कृपाल कृपा जे करै
2: नानक संत संग निंदक वीतरै
1: संत के दुखन ते मुख पवै
2: संतन कै दुखन काग जोल लवै
1: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए
2: संत कै दुखन त्रिग जोन करमाए
1: संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत कै दुखन सब को चलै
1: संत कै दुखन ते सब जाए
0: संत कै दुखन नीच नी जाए
1: संत दुखी का थाव को नाही
0: संत पावै तो भी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
2: संत का निंदक गिनती कन्ना पाए
1: संत का निंदक महा त्यारा।

0: दुख
1: संत का दुखी सदा अपवित्र
0: संत का दुखी किसी का नहीं मित्र
1: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
2: संत का दुखी सदा विकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
2: संत की दुखना सबसे तरह
1: संत के दुखी को नाही ठाऊ संत का दुखी अध बीच ते टूटे
2: संत का दुखी किसे काज न हो
1: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए
2: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर

0: ने सच्चा सोए
1: सब कट तिसकेउ करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: प्रभु की उस्तत करहु दिन रात
0: सहते आओ सास
1: सब कछु वरतै।

0: रब की जोत सगल कट सो है,
1: धनवंता होए क्या को गर्व है,
0: या सब किछ तिसका दिया धर्म है,
1: अत सूरज को गावे,
0: रब की कला बिना कहता है,
1: जे को होए मह दातार,
0: किस देन हार जाने गवार,
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग,
0: नानक सोजन सदा अरोग,
1: यो मंदिर को थामे थमन,
0: यो गुर का शब्द मन है अस्थमन,
1: यो पाखाण नाव चढ़ तरह,
0: प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है।

0: साध सेवा बड़ भागी भाई है,
1: साध संग हर कीर्तन गाई है,
0: अंग बिगन ते साधु राख है,
1: हर गुण गाय अमृत रस चाख है,
0: ओट गयी संत है दराया,
1: सर्व सुख नानक तिह पाया।

0: जस बिन दूसर हुआ न होग।
1: जप जन सदा सदा रहनी,
0: सब ते ऊच निर्मल है करनी,
1: कर कृपा जिसको नाम दिया,
0: नानक सोजन निर्मल थिया,
1: जाके मन गुर की प्रतीत,
0: जिस जने आवे हर प्रवचीत,
1: भगत भगत सुनिए इंदे हलोए,
0: जाके हृदय एक होए,
1: सच करनी सचता की रहत,
0: सच हृदय सत मुख कहत,
1: साची दृष्ट।

0: नाम के तारी पुरिया सब भवन
1: नाम के संग उदरे संसरवन
0: हर कृपा जसापने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान।

0: सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बजाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नान गुरते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश
1: सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत निरत बूझै जे कोए
1: नाम जपता की गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: अपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्टि सो करण है हाँ।

0: संत जना मिल करो विचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: और उपासम मीत विसारो,
2: चरण कमल हृदय उतारो,
0: करण कारण सो प्रभ समर्थ,
2: दृढ़ कर कहो नाम और वत,
0: इहु तन संचो हो भगवंत,
2: संचना का निर्मल मंत,
0: एक आसरा खुब मन बाहे,
2: सर्व रोग नानक मिट जाहे,
0: जिस तन को चार कुंट उठता वह,
1: सो तन हर सेवा ते पावे,
0: इस सुख को नित बा

0: जब अकार इहो कछ न दृष्टिता
1: पाप पुन तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध के संकमाद
0: जब इसका वरन चेह न जापत
1: तब हरख सो कहो किसे व्यापत
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: तब मोह कहा किस होवत परम
0: अपन खेल आप बरतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभु केवल धनी
1: तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
0: जब एक अरगम बार
1: तब नरक सुर कहो कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभु से सुभाए
1: तब शिव शक्त कहो कित ठाए
0: जब आपे आप अपनी ज्योतर है
1: तब कवन निडर कवन कत डरे
0: अपन चल तो आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुख अपने आसन
1: है जन्म मरण को कहा बिना
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस हुए
0: जब अवगत अगोचर प्रवेक
1: तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा
0: जब नाग निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे
0: अपन आप बाप ही अचजा
1: नानक अपन रूपा पी ऊपर जा
0: यह निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: यह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अभिमान
0: यह स्वरूप केवल जगदीश
1: तह
0: शाल
1: चिदर लगत को कीश
0: जह ज्योत रूप में ज्योत संग समावे
1: तह किसे पूकवन तृप्तावे
0: कर्म करावन करने हार
1: नानक करते का नहीं सुमार
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई
0: जह सर्व कला आपे परवीन
1: तह वेद कतेब कहा कुचीन
0: जब अपन आप उद्धार है
1: तो सगन

0: अपन खेल अब कर देखे
1: खेल संकुचे तो नानक कह
0: यह अवगत भगत तह आप
1: यह पसरे पासार संत प्रताप
0: दुहु पाक का पहतनी
1: उनकी शोभा उन्हु बनी
0: आप है कौतक करे आनंद चोज
1: आप है रस भूगन निर्जो।

0: अमृत बचन हर के गुण गाओ।
1: प्राण तन काय सो आओ,
0: आठ पहर प्रपेखो नेरा।
1: मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा,
0: सुनो उपदेश हृदय बसाव।
1: मन इच्छे नानक फल पावो,
0: हालत पलत दोइलिहु सुवार।
2: नाम नाम
0: पूरे गुरु की पूरी दिखिया,
1: जिस मन बसे।

0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म,
1: संत जना सुने सब वचन,
0: सर्वव्यापी राम संग रचन,
1: जिन जाता तिसकी ये रहत,
2: सत वचन साधु सब कहत,
1: जो जो होए सोई सुख माने,
0: कर्म करावन हार प्रभु जाने,
1: अंतर वसै बार पियो ही,
0: नानक दर्शन देख सब मोही,
1: आप सत किया सब सत।

0: प्रभ तारी
1: नानक निभे खेप हमारी
0: प्रभ की उस्तत करो संत मीत
1: सावधान का घर जीत
0: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सुहूत।

0: वचन मन सुने।
1: एहो निधान जपे मन कोए,
0: सब जुग में ताकी गत होए।
1: गोविंद नाम तुन वाणी,
0: सिमरत शास्त्र वेद बखानी।
1: सगल मतात केवल हर नाम,
0: गोविंद भगत कै मन विसरे।

0: असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन
0: असंख भगत।

0: सब लोग जपेंगे।
1: माणव इंद्र गजेंद्र राधव जोड़ तो लोग को राज करेंगे।
0: स्नान गजाद अनेक से अम्बर साज भरेंगे।
1: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत

दर्शन देखती कैसी अवस्था प्राप्त हो। पहला शब्द वो भी भगत नामदेव जी के पावन पवित्र वचन, ते फिर दूजे शब्द भगत जी अपनी अवस्था दर्शा रहे हैं।

ने गुरु के प्यारे गुरु सिख ने 11 भरा ने ता गुरु सवारी संगत जी 11 भरा जड़े ने ओ शहीद विच होए ने ते 12वें भाई अमरचंद जी मैं आप जी नूं उस दिन भी दस्या सी ओ छोटी उम्रे मेरे वाहिगुरु जी दे हुक्म मुताबक ए समात लोक तों चलाना कर गए सी क्योंकि ये जिन्ना महाराज ने सुवास लिखे ने गुरमुखो भोगने ओने ने संसार दी एक रीति है गग्गा गोबिंद गुण रवो सास सास जप नीत कहां बिसा सब देख बिलम ना करियो मीत नह बारक नह जोबन नह बिरदी कश बंद ओह बेरा ने बुझिए जो आए परे जम फंद ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड तहां लपटाहे गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते है जाको प्रह सुहागो काल चलाना कर गए ने। भाई मणि राम जी धन गुरु हर राय महाराज जी दे चरणा दी शरण विच आ गए पहले दिने बोल होए सी भाई माई दास ए पचंगी है इहदा नाओ की है सचे पातशाह गुरुदेव महाराज इहदा नाओ रखिया जे मणि राम ए मणिया है ता महाराज कह लगे साडी महान मणि होवेगी एक सिख कौम दे विच विद्वान होवेगा इहदे वर्गा केवल ए ही होवेगा। बोल सतवें पातशाह जी ने पहले दिन ही माई दास जी नू सतगुरु महाराज ने संबोधन कर दते सी समा अपनी चाल चलिया है जिस वेले सतवें पातशाह धन गुरु हर राय साहब महाराज कीरतपुर साहब जी दी धरती ते गुरु खालसा जी ज्योति जोत समा गए ने दो सपुत्र ने मेरे पातशाह जी दे वड्डे सी राम राय जी जिन्हां ने 72 कला जाके दिल्ली विखे औरंगजेब नूं विखाईआं सी बस एक गल तो बात बिगड़ गई सी जदों कह दिता सी मिट्टी बई मेरे सचे पातशाह कह लगे साडे मुख ना ओ लगी हुण जिधर नूं तेरा मुंह है उधर नूं चला जा। देखो गुरु खालसा जी बाणी दा किन्ना अदब सत्कार है मेरे पातशाह जी दे बेशक भावें खून दा रिश्ता है पर जिन्ने बाणी दा अदब नहीं कीता जिस सिख ने बाणी दा सत्कार नहीं कीता जिन पै बाणी अदब न धारा जानो सो सिख नहीं हमारा। फिर सतगुरां ने मुख नहीं लाया गुरता गद्दी दा सिंघासन उस वेले 8वें पातशाह छोटे सपुत्र साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज नूं प्राप्त होया है ते भाई मणि सिंह जी जिस वेले दिल्ली जांदे आ ना गुरु खालसा जी तां भाई मणि सिंह जी मेरे सचे पातशाह जी दे नाल दिल्ली पहुंचदे ने। जिस वेले दिल्ली पहुंचदे सेवा टहल करदे ने समा बन जांदा है अपनी चाल चलदा है बाबा बसे बकाले ते जिस वेले बकाला साहिब जी दी धरती ते कुछ कुछ गल्लां करा मक्खन शाह के लुबाणा प्रगट कर दंदा है ते भाई मणि राम जी गुरु तेग बहादुर जी दी बारगाह विच आ जांदे ने ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज भाई मणि सिंह जी नूं अपना दीवान थापदे ने सेवा टहल दे विच रहिंदे ने। जिस वेले गुरु सवारी संगत जी समा अपनी चाल चलदा है गुरु तेग बहादुर महाराज सचे पातशाह जी शहीद हो जांदे ने कश्मीरी पंडित आउंदे ने दिल्ली विखे पहुंचदे ने सारी वार्ता तुसी जानदे हो। गुरता गद्दी दा सिंघासन मेरे प्रीतम सचे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज नूं प्राप्त हुंदा है ता भाई मणि राम जी मेरे गुरुदेव महाराज जी दी टहल सेवा दे विच लग जांदे ने। समा अपनी चाल थोड़ा जिहा अगां तुरिया है चलदिया चलदिया समा ओ आ गया है जिन्हों कहिंदे जी 1699 आखो सतनाम श्री गज के बोलिया करो संग दे क्यों जे जदों वाहिगुरु बोलोगे ना तुहाडी रसना दा भला तुहाडे सवासां दा भला तुहाडे परिवार दा भला तुहाडे कारोबार दा भला एही तां बोल गुरु साहिब ने आखिया ना सास सास सिमरो गोबिंद एही ते गुरु ने आखिया है ना हर जपद्या खिन पल ढिलो ना की जोई मेरी जुंदुड़िए मत के जापे साहू आवे के जड़ा कह लोगे ना ओही सफल हो जाना जे सास सास हर नाम जप बिरथा सास ना खोए ओ क्या जानो क्या अंत को एही सुवास मत की जान दे गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु सवारी संगत जी 1699 दा समा आ गया है मेरे गुरुदेव महाराज ने खंडे बाटे दी पौल तैयार कीती है पंज प्यारियां

5 मिनट का समा बाकी है जी, आओ सारी संगत मिल करके शब्द गायन करिए। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़ता।